0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ